0: आज मैं रिकॉर्डिंग हाँ साढ़े सात मिनट में दिवराज जगह बाज रहे प्रोग्राम गाड़ में बाहर दक्का मैं माधो की धीरे उड़े भरी साफ तैयार फर्दी को तुम कर दान करता था एक बह
1: मैं दौड़ में एम ए फुरतम मैं फुरसत और वनी रमला अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु
1: बाज रहे हैं दरक
2: है रमीज वादे वे फुलन वर बाज रहे हैं दरक है नहीं
0: और मैं माकुरन किया है
2: आ तो एक को फाइव फुरसत है ना कास में दिन
1: हां अल्लाह के न तो मौसम उड़े नहीं थे साहब
2: मौसम ला इला इला फरान जरी जरी इत कम के वाह करवा ने दक्कन
1: वैन दे अपना कर
2: ले ने आवेस नु लाई अभी का कम अशज्जा आदि मास ने को मैं उड़े मुंदा को
1: हम बड़े तो
2: हूं गदा ऐसा वै मड
1: या ಗೊತ್ತಿ ಗೊತ್ತ ಕುರವಿದಾನೆ ಕಂದ ಹಾಕಿ ಕೊಬ್ಬೆ

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कुरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मिंदम पार गड़ तिरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
3: तेरे वन्नो तेरे वन्नो कुड़ा को कसरत खुल रही है बंद को होना है
4: रानी के हिंग हम जो हम का मार दो आहाफान
5: जी हाँ के मामा मेरे ना बदल को लंगे इंगोस पलाशे बोले
6: ड्रिंक कुछ जग कुड़ूंगी पहले ता
7: कुछ जग बैनो मी तने का
6: अंगे कुछ जग कुड़ती में पाले बोले
2: यहाँ मिहारों के तफात इहुसास ताऊ के रेडियो ड्रामा था देवराज्य गाड़ों के यूट्यूब चैनल लो मिहारो अडोस वाले बैने देवराज्य गाड़ों के यूट्यूब चैनल अब हाँ सब्सक्राइब कर लो बा

0: ఖాదీద్ ఎయ్ బిముగా వడుగడే కొను ఎయ్ మీ కుఫ్ కాఫిరుగా బయక మీహు ముస్లిమున్ తగ్గ షహీద్ కురుమట్టగా కదలు కురుమట్టగా మీహు మిగతా కనడిగా మిగతా కందత కురుము సోబు వివాహకాసవతి దింగ మీహు మీ అలిఫాను ఇతను ఒక ఎందీకమ అది మీ ఎంబికం నతీజాగతంగా మీహు అదా హుళగిందీకం మీ అగుణం బలాలారు మీ అది మీ సురతుల్ బురోజుగా ఫస్వన్ ఆయుధగా అగుణమైన ఇవాహ భయాంకు దివాఫతి అది అన్నారి జాతుల వక్కూదుగా మానేకి ఇవ్వకి దర్వాళ రోకఫావా అలిఫాంగండకే కిజుహు మాలేహ కోద్ ఎబామీహు ఏకారిగా ఐషీదే తిమిహిదే బహు మాలయామా య ఫాలూన బిల్ మినీన షుహూద్ మనకి మోమినున్న ఎబామీహు కంతకుర అగోయింగ్ ఎబీహు దెకే దెకే అని తిబి హాలుగే అదే అది సెహింగ్ ఎన్మరి దెంగ్ ఎన్ మియా మీ తఫాత్ రివాయితంగా భోరి అనే బ్యాక్ విధావులాగత హగీగతంగా మీకు అస్ మీ మిమిహు నెక్కి మీ యమన్ కరాయగలను భయ మిమిహు ప్రతమ ముషికు మిమిహు వచ్చ మోమిని ముషికు వచ్చ కామియాబ్ హోది ఎఫ్ఓగా అనేక స్కాఫర్ ముస్లిం వచ్చ కామియాబ్ హోదా ఎమీహు ముస్లిం ఎమ్మెం గతులు గొప్ప మీ వడగొండక అలాలా ఎమీహు అందాలికమ ఇన్మరి భయంకురబాఫ్ అని అది అనబ్బాయి మరి భయంకురబాకతో హగీగతంగా మీ హబుష్కరాగ హింగాది హాదిసాయ్ మీ హాదిసాయకి అది మీ తఫాత్ గుయకత అవుడన్ మై వాహత ఇల్ మరి బయాంకొ దెబ్బాఫ ఎబహరి
1: అది కురిమేస్ అవుణమే దన్నోమ అన్న ఫదేం మీ అవుణమెంగే మక్సదకి మీ మీహుం గతులు వెదియి కొం గొతకత్తోవ అది మిమిహుం గతులు వి కొం జమాన గతోవ మీ కంతత్త బల మీ కంతత్త తహగీ కురుమెన్నో అవుణమెంగే మక్సదకి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా కీరుత్ ఖుర్ఆనుగ బయాంకురవ్వఫ మిఫద వాహకతకొం ఇబ్రల్లిబగే అవుణమెంగే నఫ్సు మికహా కంతెత్తకం రక్కాతిరకం అగుణమిందకి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అంగవాఫావా గొత్తుగా తిబే రంగళు మోమిను గొత్తుగా బుమ బారు ఏళు దెన్ కురియ గందవాణి అషేఖ్ అబ్దులజీజ్
2: అస్హాబుల్ ఖుదూద్ వివాహకే బదాలారు హగీగతుగా వివాహక అగుణమిన్న తఫ్సీరు ఫొయ్తగే అది అగుణమింగి తారీఖి ఫొయ్తకుగా వివాహకత వాళ్ళ తఫాతు గొగ్గుత బయాకుర బాఫావి ఇమామ్ అహ్మద్ సుహైబ్ రోమీగి కిబైన్ రివాకుర బాఫా రివాయత్ గవే రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం హదీస్ ఫుల్ కురవియ కలేమింగి కురీగా రస్కలకు ఉడునే ఏ రస్కలిగ్గి అరిహుగా సిహురు వెరియకు ఉడునే ఏ సిహురు వెరియ ఉమరు దువస్వే ముస్కుడియుము ఏ సిహురు వెరియ రస్కిఫాన దెన్నివియే తిమంగె కాత కుట కుజ్జకు ఫొణువాషే నువత జువానకు ఫొణువాషే తిమంగ్ ఏనే తిమన్నే లిఫావా ఇల్ముత దస్కొద్దే హుషీముయే డెంగ్ రస్కిఫాను ఏ సిహురు వెరియా కుజ్జకు సిహురు వెరియా కార్య కుజ్జకు ఫొణోయి ఫొణోము ఏ సిహురు వెరియా ఏనే దస్ఫాహురి తకెతి దస్కొద్దెము గెందియ ఏ గెందియ గెందిముగే తెరేగా మీ కుజ్జాగే దుహకు మీ బద్దలు అని రాహిబక రాహిబక వద్దలుము రాహిబ్గే వాహకతం అడోహా మీన ఇకమా హైరామ్వే అంతరీసు అని ఏమిమ రాహిబ్గే కార్యం వెస్ మీన ఇల్ము లిబిగన్న ఫషి ఎమ్మె ఫహుం మీనే కంతత్త వమున్ దియ గొతుం మీనే ఎమ్మె ఫహుం రాహిబ్గే బస్ సిహురు వెరియాగే బస్ తకవురె బొడ కబూలు కురవే ఫషి ఎమ్మె ఫహుం మీన రాహిబ్గే బస్ అహా ఏనగా ఎమ్మె ఇచ్చం ఇస్లాం బి మివాహ కలగొండు మీ ముస్లిం గాయసో రివాయత మీ రివాయత మేగొంతం కొలే హులాస కొమ్మి గెనస్ దెని అది మీ వాహకత కబూలు కురేము మీన రాహిబ్గి కారిన్ దస్కుడి తకెతి కబూలు కురేము ఏనగా ఎమ్మెచ్చం ఇస్లాం బి ఇస్లాముంగి సబబు అల్లాహు సుబ్హానహు వ తఆలా మీ రివాయత్ గెన్నని రాహిబు మీనే ఇస్ముల్లాహిల్ ఆజమే మికియా ఇస్ము ఫుడు దస్కొద్దెవ్వియే ఏగ సబబు ఏన బలి జైఫావా మీహుంగి బలిత అల్లాహుగి ఇజ్ను ఫుడా ఎకు మీ సలామే వెగిందే మీనగె సబబు మీన మీ సబబెగ్గి గొతుగా అల్లాహు మెదువెరి కొరవ్వా అల్లాహు మీనగా ఎమ్మతిన్ ఎమీహు షిఫా దివ్వ ఎగొతుం అందిరి మీహునా బరస్ బలి జైఫావా మీహు ఫద మీస్ మీహు మీన రగళ కొరముందే మిగొతన్ ఎద్దుహకు బలి మీహకు ఐస్ మీనే కార్య బలి మీ ఎద్దుహకు మీనే కార్య అందిరి మీహకు ఐస్ మీ దన్నవని మణిఫానే మణిఫాను మిఫద మిఫద గొయ్గొతక మీహున రంగళ కురాతి తిమం అడుహీమే ఎహమీమ తిమన్నే ఏగి కమె కొద్దివం వి నుంతోయ్ మి కుజ్జ నువత మీ ఇల్ము ఎరియ నువత మీ మూమిన్ మీహా మీ దన్నవని మి బునని నూనెకే తిమన్నేకి మీహున రంగళ కొద్దే మీ నూనె తిమన్నగే మసక్కతికి అల్లాహ దెన్నవమె అల్లాహు మీహున షిఫా దివ్వని కలేవెస్ ఈమాం వే అల్లాహ దన్నవాఫికమ వని వి అల్లాహు షిఫా దివ్వాని దెన్ మీన ఈమాం వే అల్లాహ దెన్నవి దెన్నోము అల్లాహ సుబ్హానహు వ తఆలా మీనగే అలిక আমরা রাদ্দ করেবি ডিং রসকিফানু গ্যারি হুগা উড়ে কুজ্জক ওয়াতি কো মি আন্দিরি মি হেকি নোত মি আন্দিরি মি শিফালি মনো মি হেকি রসকিফানু গ্যারি হুগা দাই মি কোং গিশিন দে উড়ে মি হেক ওয়াতি এতরা গোস উড়ুমগে তেরেগা রসকিফানা মি ফেননি মি লুলা আলিয়ে ফাওয়াত মি লুলা ফেননতা এহম রসকিফানু মি বুনি খালি গে লুলা কিহিনে গে ফাসে হেবি কাকু হে কালে শিফা দেবি তি বালি কাকু হে রগল কতিনি মিন উমরানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিমঙ্গে রব্বে তিমঙ্গে কলাঙ্গে এমরানি এম বিজে তিমন্নে নুং হিয়ে মালিকুম ইমরানি রাসকি ফারমনে তিমন্নে নুং হিয়ে এম বিজে রগল কুরি এমরানি নুনে কে কালেগে সুরি রাসকলাঙ্গে এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একলাঙ্গে তিমং ইমামু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিমন্নে শিফা দেবি ডিং মিনে মিবাহক মিনে মিগত বুনুমু নত দেনেমু রাসকিফান মিনে আনিয়া কোরাম ফেশি এ আনিয়া কোরাম ফেশি ফেশুমগে নতিজায়ক বেগেন দিয়েই মিনে এ ইমাঙ্ক হোদাদি মিহক হাময়া ওয়াসিলুয়ে উনি এ ইমাঙ্ক হোদাদি মিহকি এককলা কুরিম সালগন মি দেনেবি গোলাম এ ইমাম বি মুমিনু দেন রাসকিফান এ মুমিনু কুজ্জা গেনাস এনে আনিয়া কোরম ফেশি এ আনিয়া কোরম ফেশুমগে নতিজায়ক বেগেন দিয়েই এ রাহিবু মিহায়া হাময়া মিমি হন্তিও আদে রাসকিফানু মি রাহিব মিহা গেনাস এনগে বলুগা কিস আলা দেফল কললেউনু হাম এফাদা এ দেফল কললেউনু দেফল কললেউমগে এগে কুরি এনে দিন দু কললুমা রাসকিফানে গে হেনবে সেনা একমে নকুরি দেন ইমাম বি বালি সাফ হাসে হাবি মিহাস এনবেস গেনাস কি হালা কি হালি এনমেস এনবেস হামা এনগে ইমান কামুং এমবুরি না মি আরগন মেন না হাকিগতুগা ওয়ারা ইবরাইতির ওয়াহাগতকে মি কিয়া দেবু মিদানি দেন আনে কুজ্জা মি রাহিবগা এমমচ্চং ইসলাম বি গোলাম মি কুজ্জা ইয়া বেহেগতু রাসকিফানো মি আঙ্গওয়ানি মিন ফারবদেগে মচ্চং আরা মিন ওয়াট্টালাশে মিন ইমা মি এ বুনা বুনুম দুকো দুকোল্লা এমরি আতোজিকম ওয়ানি ওয়াসলেনতে এহনুনি মিন ওয়াট্টালা মারালাশে মিন গোয়াগে বায়াকু মিহুন জামাআতে গে মিহুন ফারবদাগে মচ্চং এরুমু মিন আল্লাহ মি দন্নওয়ানি আল্লাহ হে মিমিহুন গে নুবায়াকু মন্তি মাস রাকাতের কুরওয়ান্দে এহেন আল্লাহ দন্নেউমু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ মিহুন গেন্দাওয়া মিন রাকাতের কোরে এমিহুন এ ফরবদমতি ওয়েটিগে নুয়া তা আল্লাহুগে আযাব আইসগে এমিহুন হালাকু গিন দিয়ে গতক হালাকু গিন দিয়ে মিনা সালামবি মিনা আইস রাসকিফানুগে আরিহা আওমু রাসকিফান মিদনওনি কিনিং এ কালেতি কোবাই কালেগে একুয়েরি হায়রাম মানত তো এহনমস মি মিনা মি রাসকিফানা দন্নওনি রাসকিফানু এ এমিহুন মারওগে গিচ্চে তিমন সালামবি দেন রাসকিফানু আমুর করবি জামাতি গে বেক মিন গোয়াং খান্ডক গোস খান্ড ফত্তাশ দোঞ্জ কল্যাং গোস খান্ড ফত্তাশ মিন দোঞ্জ কল্যাং গিন ফেশুম গোস খান্ড এমি হং ইবুনা বেনু ওয়া হিসাব ক দিউম আল্লাহ দন্নওয়ানি আল্লাহ হে মিমি হং কি বে ইন্তিমান সালাম কুরওয়ান দে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমি হং গরক কুরওয়া মিন সালাম কুর হাম রাসকিফানু গাড়ি হে মিন এমবুরি আওম রাসকিফানু দন্নরে কি নে হে টিভি মিন দন্নই মিগতম মিগত কান্তবে গি হংগেজে দেন মি কোয়া মি দন্নওয়ানি রাসকিফানে রাসকিফান তিমন নুমেরে নে তিমন না মেরে নতি এমি গতকি এগতকি খালি নত মানিকফান গম গে এমে হুস বিমাকং এ কুরাশে এ কুফা তিমন নাগে গে তীরে জাহাশে এ তীর জাহাশে এ বিসমিন কিয়াফা এ তীর জাহাশে তিমন গে খালাং গে মিদেন মি মিদেন নেবি এক গোলাম গে খালাং গে ইসমা ফুলো তীর জাহাশে এর তিম মারুই দানে মিগত কান্তত্ত কিয়া দিনুমু রাসকিফান এগত কান্তত্ত কুরেভি এন তীরে বিসমি কিয়া তীরে জেহি জেহমুগে সবু মিনা মুলাক ফসেহ মারুগেন দিয়ে মি মারুগেন দিয়ে দিউ ওয়েগেন দিয়ে এ কওমুগে মি হু মি কুজ্জাগে খালাঙ্গে মি গোলামুগে খালাঙ্গে ইমামু মি ইয়ে সবাবু মিন রুড়িয়াসগে মিদেন নেবি রাসকিফান কোফাগে মিবা মিহু মারগন্ডে কোনফা আন্দালুম আমর করে মি ইয়া মিওয়াহকে মিকেনি আসহাবু আল খুদুদে এই দেমে মোসা সে দেন নেবি ও খুদুদে কি এই দিগা কোণে ফাওয়া বড় ওয়ালগড়ক কিয়া নামে আরাইব হুম এ ওয়ালগনকে তেরে আলিফাং আন্দা মিমি হুম আন্দালে মি মুসলিম গা মিরিওয়ায়ং আইসা কই ইবনে ইসহাক গা মিরিওয়ায় তাফাত কোং আইসা বড় আদি মি গে ইতরো সালগন হিওয়ানি ইব্রাহিম মিহারস এই নেবি লাসফা হে এ মিওয়াহক তক দাম মিওয়ারা আসলো শৌক ওয়েরিওয়া ইব্রাই তেরি ওয়াহকে মিফি মিওয়াহকা গে গুলে গিম ইব্রাই তক আলগন মে আদি মিওয়াহকা গে এহেনি হে রিওয়ায়ত গিনসা বালালা
1: ಅದೇ ಶಕ್ಕಿನ ಇಮಾಂಕಮಕ್ಕಿ ವರ ಬಾರುಗದ ಬಾರೆ ಹುರಿಯ ಹತ್ಯಾರಕ ವರ ಬಾರುಗದ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಮಾಂಕ ಮಿಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತುಗ ಇಮಾಂಕಮ್ಗೆ ನೂರು ಹರುಲಾಫ್ಕಮ ವಾನಮ್ಮ ಎಮಿಹ ಬಿರುಗಣ್ಣಾಣ ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ವರಾತೆ ನೋಡಾಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಫಿಯವ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಿಗೆ ಕುರ್ಮತಿಗಾಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಾಕ ಸೇನ ಬೀರನ್ನು ಗಣ್ಣಾಣ ಮೂಸ ಅನ್ವರ್ ಹೆಚ್ಚ ಇತರು ಕುರುಬಂಗಳು ವಾಹ
0: ಅದೇ ಮೀ ಅವನು ಅಜೀಗ ವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಇತರು ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನು ಮನಿ ಅಜೀಗ ವಾಹಕ ತಂಕುಳ ಕುರಿಯ ಜಿಹಿಲಾಫ ಮೀ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಗ ವಾಹಕ ನೋತ ಕುಜ್ಜಗ ವಾಹಕ ವಾಗುಣ ಫೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಯ ಮೇ ಸಿಹರ್ ದಸ್ಕೋ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಮೇ ಕಾಹಿನಿಗೆ ಗಾತ ನೋತ ಕಾಹಿನ ಮಿಹ ಗಾತ ದಾಂಪೆಟ್ಟಿದೆ ಮೇ ಕುರಿಂಗ್ ಅಜೆ ಶಾರ ಕುರ ವಿಹೆಂಗ್ ಎ ಕುಜ್ಜ ಮಗವತಿ ಮೇ ದಿಮಾವಿ ಮೇ ರಾಹಿಬ್ ಮೀಹಾಯ ದಿಮಾವಿಗೆ ಮೇ ಬುಣನಿ ರಾಹಿಬ್ ಮೀಹ ನೋತ ಮೇ ಸಿಹರ್ ಹದಾ ಮೇ ಕಲೇಗ ತಳಾಗನ್ ನೋತ ಕಲೆ ಅದಬ್ದೇ ಉಳಿಫಿಕಮ ಗಣ ಕಲೆ ಬುನಾಶೆ ಗೇ ಮೀಹಂಗ ಸೋಬನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಲಸ್ವಿಯ ಕಲೆ ಕಾರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇವು ಮೂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ್ ಎಫದ ಮೇ ಗೇ ಮೀಹಂ ಕಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅದಬ್ದೇ ಗೇಂಗ್ ಲಸ್ವಿಯಂಗ್ ಅದಬ್ ಮೇ ಉಳಿಕಮ ಗಣ ಕಲೆ ಬುನಾಶೆ ಸಿಹರೋರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕಿಯೋಂ ಹದಾಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಲಸ್ವಿಯ ಮೆಗೊತ್ತುಂ ಏನ ಎದ್ದುಹಾಕ್ ಮಗಮತಿ ಹಿಂಗಾಫ ದನಿಕು ಏನ ಫೆವಣಿ ವರಬ್ಬೋಡು ಜನವಾರಿ ಕಾಲೆ ಹೆಚ್ಚೆ ದೆ ಮೀನ ಮೀ ಬಲಾಲಿರು ಮೀಸ್ತಕೊಂಡು ಏಕೆ ಸಲಾಮನ್ವೇಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೋತೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏನ ಹಿಂದುಗ ಬುಣ್ಣಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೀ ಅಂದು ಬಲಾಣಮೆ ಮಯಂದೋಸ್ ಮಣ್ಣು ವತಾಲಾಗ ಹದ್ರತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬೆತಿ ಕಂಬೊಡಿ ರಾಹಿಬ್ ಮೀ ಹಾತು ಅನ್ನೋದು ಸಿಹುರಿ ಆತು ಮೀ ಹೆಂ ಬುಣೆಫ ಏನ ಮೀ ಹಿಲೆ ನೆಗಿ ಹಿಲೆ ನಗಾಫ ಏನ ದುವಾಕುರಣಿ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ ಇನ್ಖಾನ್ ಅಮ್ರು ರಾಹಿಬ್ ಅಹಬ್ ಇಲೈಕ ವ ಅರ್ಲ್ ಮಿಮಿನ್ ಅಮ್ರಿ ಸಾಹಿರ್ ಫಕ್ತು ಲಿಹಾಜಿ ಹಿದ್ದಾ ಬಹತ್ತ ಯಜೂಜ್ ಉನ್ನಾಸ್ ಮಾಣೆ ಗದ್ದಾ ಬ್ರಸ್ಕಲ್ಯಾಕೋ ಇಬ್ಬ ರಸ್ಕಲ್ಯಾಗ ಹದ್ರತುಗ ಮೀ ಮೀ ಸಿಹುರಿಯ ಕಂದತ್ತಕ ಒ ರಾಹಿಬ್ಗೆ ಕಂದತ್ತ ಎನ್ನುವತ್ತ ಏನಾಗೆ ಬಸ್ತಕ ಅಮತಕ ಏನಾಗ ವಾಹಕತ ಲೋಬಿಕಮುಗ ವಾಣಮ ಮೀ ಮೀ ಜನವಾರು ಕಿಬ ಮೀಸ್ತಂಗ ಸಲಾಮ ಕುರಬ ಮಿ ಹುನ್ನ ಮಿತನು ಸಲಾಮ ವೇಣೆ ಗೊತ್ತೆ ದಕ್ಕುವ ಫಾಂದೆ ಡೆಂಗ್ ಏನ ಮೀ ಹಿಲೆ ಎಲ್ಲುಮು ಎ ಸೊರು ಮರು ಎಸರುಗ ಜಿಹಿ ಪೈಸರು ಮರುಗೆಂದಿ ವಿವಾಹಕ ರಾಹಿಬ್ ಮೀಹ ಕಿಯಾದಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಹಿಬ್ ಬುಣಿ ಎ ಕೊಯ್ಫುಳಾಯ ಖಲಿಯ ತಿಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿಹಾರ ಮಾ ಮೊಳುವೆಜ್ಜೆ ಖಲಿಯ ಮೀ ಮುದಗೂತಕ ಮುಸೀಬಾಯತಕ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣೆ ಹೆಂ ಬಿಯಸ್ ಎಬ್ಬೆ ಸಾಲಿಗ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ವಾಹಕ ಮೀಸಕೊಂಡು ಗಾತನು ಅದಕ್ಕ ಆಶೆ ದೆಂಗ್ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಅಜಿಯ ವಿದಾಳೆ ವಾಹಕ ತಾನೆ ಕುಜ್ಜಾಕಿ ಮೀ ಬರಸ್ ಬಲಿಯ ಜುಜಾಂ ಬಲಿಯ ಬಿಫದ ತಫಾತ್ ಉಂದಗು ಬಲಿ ತಕುನ್ ಜಿಫ ಮಿಹುಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸಲ್ಯಾ ಮಿಹುನ್ನ ಬೇಸ್ ಪಸಿ ಬೇಸ್ಕೋ ಬೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಸ್ ಮಾಡುವ ತಾಲಾಯ ಏನ ದುವಾ ದೆನ್ನ ಸಮು ಮಿಹುನ ಶಿಫಾಲಿ ಬೀಗಂದ ಮಿಸ್ ಮಿಹು ದೆ ಹಗೀಗ ಅವನು ದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೀಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಮುನುಕ್ತ ಈ ಹಗೀಗತು ಮೀ ಅಜಿಯ ವಿದಾಳು ಹೆಂಗ್ ಎತ್ತ ತಿಬಿ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆ ರಸ್ಗಫಾನ್ ಕತಲು ಕುರಬಂಗ್ ಅಸ್ತು ಕುರಬ್ಬ ಎಮ್ಮೆ ಕತಲು ಕುರಮ್ಮಂಗೋಸ ಫೆನ್ನನಿ ಮೀ ಕೂಡ ಕುಜ್ಜಕು ಮಾನಗೆ ಕಿರುಬ ಕುಜ್ಜ ಕುರಾಯ ಹೊರಿ ಅಂಗೆನಕು ಏನ ಏ ಮೀ ದಾಣೀತೋ ನುದಾಣೀತೋ ರಸ್ಗಫಾನು ದಕ್ಕವ ಗಬು ಕುರಾನ ಮಿಹಿನ್ ಮಾಹಿತಂಗ್ ಅರೋಮ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಕುಜ್ಜ ಕುಜ್ಜ ಬುಣ್ಣಿದ ಮಮ್ಮಾಯ್ ಮಮ್ಮ ತಿಹಿರಿ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗೆ ಮಮ್ಮ ಕುರಿಯದ್ದಾಶೆ ದಿಂಗ್ ಎ ಮಮ್ಮ ಏ ಒಳಗೊಂಡು ತೆರೆಯ ಫುಮ್ಮಾಲಿ ಮೀ ಅಗೊಂಡ್ ಮೇ ಕುರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಫನ್ ದನ್ವಾಫನ್ನ ಮೀ ಮಮ್ಮಗ ಉಂಗ ತಿಬೆಗೆ ಬಾಹ ದಿಕ್ಕಿ ಕುದಿಂಗ ತೆರೆಯಗ ಹಿಮನೆ ಕುಜ್ಜಕ್ಕಮ್ಮ ಮೀ ಕುಜ್ಜ ಹಾಕಿ ಎಸ್
1: ಅಶೇ ಇಬ್ರಾಹ್ಮನ್
3: ಜಮೀಲ್ ಅಳಗೊಂಡ ಹೀವಣಿ ಮೀ ವಾಹಕ ಮೀ ಹಮ್ಮ ಎಕ್ಕೊಂ ಅದಿಯಸ್ ಮೀ ದಣ್ಣವಾಲು ಐ ಮೀ ಎಹುನ್ ತೆರಿ ನಟ್ಟಕ ಅವರ ಬೇಣು ತೆರಿ ಕಮಿಂಗ್ ಹೆ ಎಹೆ ಮೀ ಮಳಗೊಂಡ ಎ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಲಾಫ ಕುಡಕು ದಾಂಕ ಮ ಖಿಯಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮೀ ಅಣಿ ಅದ್ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಾಣುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವಿ ಸೂರತುಲ್ ಬುರೂಜುಗ ಮೀ ವಾಹಕ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಫುರತಮ ದಿಹಾಯತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುಫಾವಣಿ ಮೀ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಉಖ್ದೂದುಗೆ ವಾಹಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುನ್ ಇಸಾಕ್ ರಿವಾ ಕುರವಣಿ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಮಿಹುಣಕಿ ಇಸಾಕ್ ಫಾಣ ಬುರೆ ಫಹುಗೆ ಬೈಕಮ್ಗ ಎಣ್ಣಮೆಸ್ ಎಹಿಂ ಬೇಕಲು ಮಿಕಮಾ ಖಿಲಾಫೆ ಫಾವೆ ಗಿಣ ಬೇಕಲು ಹೀ ಕುರವಣಿ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಮಿಹುಣಕಿ ಏಗ ಕುರಿಗೆ ಬೈಕಮ್ಗ ಅದಿ ಮಿಕಮಕಿ ದುಣಿಯೇಗ ತಕುರಾರುಕು ಹಿಂಗಮು ಅಣ್ಣ ಕಮಿಕಮ ಮಿಕಂ ಹಿಂಗಾಫವಣಿ ಮುಮಿನುಂಗೆ ಹಕ್ಕುಗ ಕಾಫರುಂಗೆ ಫರಾತು ಖಾಸಕೋ ಜಬ್ಬಾರು ಕಾಫರುಂಗೆ ಫರಾತು ಮಿವಾಹ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಾಣುಗ ಬಯಾಂಕುಫಾವಾಯಿರು ಮಿವಾಹಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಹದೀಸ್ ಫುಳುಗವೆಸ್ ಬಯಾಂ ವಿಫಾವೆ ಅದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರವಣಿ ವಸಮಾಯಿದಾತಿಲ್ ಬುರೂಜ್ ವಲ್ ಯೌಮಿಲ್ ಮೌಊದಿ ವಶಾಹಿದಿ ಮಶೂದ್ ಕುತಿಲ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಉಖ್ದೂದ್ ಅನ್ನಾರಿದಾತಿಲ್ ವಕೂದ್ ಮೀ ಸೂರತುಲ್ ಬುರೂಜ್ಗೆ ಎಕಕುಂ ಫಹಕ ಮಿಯಾಯತುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ತರಿತಕ ಬುರುಜುತನ್ ಹುಣ್ಣ ಉಡು ಗಂದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ವಾದುವೆ ವಿಗಂವ ದುವಸ್ ಎ ಕಿಯಾಮೆ ದುವಸ್ ಗಂದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ಹೆಕಿವಾ ಫರಾತ ಹೆಕಿ ಬಸ್ ರದ್ದುವಾ ಫರಾಯತ ವಿಸ್ ಗಂದೆವಮೆ ಬೈ ಬೇಕನು ವಿದಾಳುವ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಹೆಕಿವಾ ಫರಾತಕಿ ನಬಿ ಬೇಕನು ಅದಿ ಹೆಕಿ ಬಸ್ ರದ್ದುವಾ ಫರಾಯತಕಿ ಎಬೇ ಬೇಕನುಗೆ ಉಮ್ಮೆತ್ತ ಅದಿ ಎಣು ಗೊತ್ತ ವಿಸ್ ಮಿ ದೆಬಹುಗೆ ಮಾಣ ಕುರೆಫಾ ದೆಮೆ ಕುರಿಂ ಅಲುಸ್ತಾಜ್ ಮೂಸಾ ಅಣ್ವರುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗ ಎ ಬ್ಯಾತೋಗ ಮಚ್ಚವರ ರಂಗಳ ತಫ್ಸೀಲುಕೊಂ ಅಲಿ ಅಳುವಾಲಾಫವೆ ವಳುಗಣುಗೆ ವೆರಿಯನ್ನ ಲಾಣೆ ಲಿವ್ವಿಗೆಂ ವೇ ಆದ ಕುತಿಲ ಅಸ್ಹಾಬುಲ್ ಉಖ್ದೂದ್ ರೋಕುರವಿಗಿಂ ವಾ ಅಲಿಫಾಂಗಂಡು ಒಯ್ ವಳುಗಂಡೆ ಮೀ ಫಸ್ ಆಯತುಗೆ ಮಾಣ ರಸೂಲಾಗೆ ಸುಣ್ಣತುಗ ಮಿವಾಹಕ ರಿವಾವಿಗೆ ಆಸ್ವಾ ಗೊತನ್ ಅಳುವಣು ಬಲಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಮೀ ಹದೀಸ್ ರಿವಾಫ ವಣಿ ಸುಹೇಬ್ ದೆಮ್ಮೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ಗೆ ವಾಹಕ ಶಾರ ಕುರೆ ಗೊತ ರಿವಾ ಕುರವಾಫ್ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ತಿಯಬ್ಯಾಮಿ ಕುರುಂ ಉಳುನ್ ರಸ್ಕಲಿಕೆ ಎ ರಸ್ಕೆ ಫಾಣುಗೆ ಕೌಮುಗ ಖಾಸ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಕುರುಣೆ ದೆಂ ಮೀನಾ ಉಮುರುನ್ ದುವಸೆ ಮುಸ್ಕುಳಿವು ಮುಂ ಏಣ ರಸ್ಕೆ ಫಾಣ ಅಂಗಣಿ ಮಿಹಾರು ತಿಮಂ ಮಿಹಿರಿ ಉಮುರುನ್ ದುವಸೆ ಮುಸ್ಕುಳಿಫೆ ಎಹಂ ವೆ ತಿಮಂಗ ಗಾತ ಸಿಹುರು ದಸ್ಕುರುಮ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕ್ ಫೋಣುವ ದೇಶೆ ದೆ ಮಿ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಗಾತಂ ಎ ಸಿಹುರು ದಸ್ಕುರುಮ ಕುಜ್ಜಕ್ ಫೋಣುವಣಿ ಮೀನಾ ಎ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಗಾತ ಸಿಹುರು ದಸ್ಕುರಂದ ಮಗುಮತಿ ಅಳುವೆರಿಯಕ ಬದ್ದಲುವಣಿ ದೆಂ ಮೀನಾ ಎಂ ಎ ಅಳುವೆರಿಯ ಅಳುಕಂಕುರ ಗೊತಾ ಕಂದತ ರಂಗಳುವೆಗೆಂ ಎ ಅಳುವೆರಿಯ ಗಾತುಗ ಇಶೀಂದೆ ಇಂದೆ ಏನಾ ದಕ್ಕ ವಾಹಕತ ಅಹಾ ಹೆದಿಕಮ ವಣಿ ಏನಾಗ ವಾಹತಂ ಅಡುಹಾ ಹೆದಿರು ಏಯ್ ಅಜಾಬೆ ಫದ ರೀತಿ ವಾಹಕತೆ ಕಮುಗ ವಣಿ ಅದಿ ಏನೇ ಕಬೂಲ್ಕುರಂ ಫಸೇಹ ವಾಹಕತೆಗೆ ಕಮುಗ ವೆಫಾವಣಿ ದೆ ಮೀನಾಗ ಉಸೂಲಕಿ ಹಗೆಗತುಗ ಮೀ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಗಾತ ಸಿಹುರು ದಸ್ಕುರಂ ದಾಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯ ಫುರುತ ಮಡುಕೊಲ್ಲನಿ ಅಳುವೆರಿಯಾಗ ಗಾತುಗ ಮಡುಕೊಂ ಎತಾಗ ಮೀ ಏನ ಬೇಣುವ ಎತಾಗ ಮಡುಕೊಗ್ಗೆ ಇನ್ನುಮ ಎಕುಗ ಎಫ್ಹು ದೆಂ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಗಾತ ಮೀ ದಣಿ ದಿಯಾಮ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಬೈಫಾರ ಮೀನೆ ದಸ್ವಿಗೆ ಮೀನೆ ಗ್ಯಾಗ ತಳಾ ಹದಂ ಫೆಶೀಮ ಮೀನ ಮಿವಾಹಕ ಅಳುವೆರಿಯ ಗಾತುಗ ಶಕುವಾ ಕುರಣಿ ತಿಮಂ ಮಿತನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಹಿಂ ಹದಂ ಫೆಶೀಮ ಮೀ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಅದಬು ದೆಂ ಮೀ ಹಿಂದುಗ ಮಿ ಅಳುವೆರಿಯ ಮೀ ಬುಣಣಿ ಹೆಂ ವೆಜ್ಜೆಯ ದೆಂ ಕಲೆ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರುಗಣ್ಣ ಕಮ ವಂಜ ಏನಗ ಗಾತುಗ ಬುಣಾಶೆ ತಿಮಂಗೆ ಗೇಗ ಮೀಹುಣ ಹುರೆ ಲಸ್ವಣಿಯೆ ಅದಿ ಗೇಗ ಮೀಹು ಲಸ್ವೆಗೆ ಎವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಿಯ ಬುಣಾಶೆ ಸಿಹುರುವೆರಿಯ ಹುರೆ ಮಿಕೊಳಂ ಅವು ಲಸ್ವಣಿಯೆ ದೆನ್ ಹಗೆಗತುಗ ಬಯ ರಿವಾಯತುಗ ಬುಣಾಗತು ಮೀ ಎರಡು ನುಕುಮೆಗೆ ಅಣಿರಶ ಮಿ ದತುರು ಕೊರೆನ್ ಜಿಹೆಣಿ ಸಿಹ ದುರು ಹಿಸಾಬಕಶೆ ಏನಗೆ ದತುರು ಮೀ ದಾಂಜಿಹೆಣಿ ದೆನ್ ಏನ ಎಗುತುಗ ಉಳೆಮುನ್ ದಣಿಕೋ ಎದ್ದುಹಕು ಏನ ಮಿ ದತುರು ಉಗ ನುಕುಮೆ ದಾ ಮಗುಮತಿ ಬೊಡು ದಾಬ್ಬೈ ನುಕುಮೆ ಮೀಸ್ತಕು ಮಿ ಹಿಫಾಟ್ ವಾಹಕೆ ಏತಿಗೆ ನುರಕ್ಕಲು ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಮಗು ಹುರಸ್ಕುರವೇಕಸ್ನೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಕೊಳಕದ್ದಿವೆ ಕಣ್ಣೆ ಮೀಹು ಮಿತಿಬಿ ಏಗ ಜಿಹಿಫ ಮಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಗೊತೆ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ನುಫೆಣಿಫ ದೆ ಮೀನಗೆ ಹಿತ ಮಿದುಹುಗ ಮಿ ಅರಣಿ ಮಿಯದು ಅಹರೆಂ ವೆಜ್ಜೆಯೇ ಮಿ ಸಿಹುರುವೆರಿಯಾತೋ ನೂಣಿ ಮಿ ಅಳುವೆರಿಯಾತೋ ರಂಗಳಿ ಬದಾಲಂ ಹಗೆಗತುಗ ಮೀ ವರ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸುತಿಕೆ ಮಿದ ಮೀಹುಂ ಕುರೆ ರಂಗಳು ಮೀಹಕಿ ಕಾಕುತು ಬಲಾಲುಮ ದೆ ಮೀನ ಮಿ ಹಿಲಗಣೆ ನೆಗುಮ ಫಹುಗ ಮಿ ಬುಣನಿ ಹದ್ದವ ಬುಡ್ಕೊ ರಸ್ಕಲಾಕೊಯ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಹಜರತುಗ ಮಿ ಅಳುವೆರಿಯಾಗೆ ಅಳುವೆರಿ ಕಂದತ್ತಕ ಮಿ ಸಿಹುರುವೆರಿಯಾಗೆ ಕಂದತ್ತಕ ಒರೆ ಮಿ ದೆಫರಾತುಂ ಕೊರೆ ಲೋಬೆತಿಕ ಮಿ ಬೋಡು ಫರಾತಕಿ ಅಳುವೆರಿಯಾ ಕಮ ವೆಜ್ಜೀಯ ಮಿ ದಾಬ್ಬ ಗತುಲುವೆಗೆ ದಾಣೆ ಗೊಯ್ ಮೆದುವೆರಿ ಕೊ ದೆವ್ವ ಮೀಸ್ತಕು ಮಿಕಮ ಮಿಕಮ ಸಲಾಮೆ ಕೊರವ ಎ ಮೀಹಕು ದಾಣೆ ತನಕ ದೆವೇಣೆ ಮಗು ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಮೆದುವೆರಿ ಕೊ ದೆವ್ವಮಂ ಎದಿಗೆ ಮೀನ ಮಿ ಗಾಗಣು ಮಿ ಎಲ್ಲಣಿ ಮಿಹಿಂ ಬುಣೆಫ ಏಯಿಂ ಜಿಹಿಫ ಮಿ ಎ ದಾಬ್ಬ ಗತುಲುವೆಗೆ ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣ ಎ ಮೀಹಕು ದಾಂಬೇಣು ತಾಕ ದೆವೇಗೊವ್ವೆ ಮಗು ಅಮಾಂವೆಗೆ ಮೀ ದಿಯೈ ದೆ ಮಿಜುವಾಣ ರಾಹಿಬ್ಗೆ ಗಾತ ಗೊಸ್ ಮಿಖಬರು ರಾಹಿಬ ಮಿಕಿಯಾದನಿ ಮೀದು ಮಿಹಿಂ ಮಿಹಿಂ ದಿಮಾವೆಜ್ಜೆ ದಿಮಾವಿಮ ತಿಮಣ್ಣ ಮಿಮಿನ ಮೀನ ಗೊತುಕ ಕಂತತ ಕುರೀಮ ಮಿಹಿಂ ವೆಜ್ಜೆ ದೆನ್ ಇಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮೀ ಅಳುವೆರಿಯಾಗೆ ಹಿತ ಮಿಯರಣಿ ಹಗೆಗತುಗ ಮಿತಾಗ ದೆನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀನೆ ಕಿಯಾದೆನ್ ವಿಯೇ ಕಂತತ್ತ ಮೀ ಒಯ್ ಗೊತಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕ ದೆನ್ ಅಳುವೆರಿಯಾಣಿ ದರಿಫುಳಾಯೆ ಮಿಯದು ದರಿಫುಳು ತಿಮಣ್ಣೆಯವರೆ ಮೊಳುವೆಜ್ಜೆ ಎಹೆಂವೀಮ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆಯ ಮೀ ಇವುಣು ಅಡುತಕ ಎಗ್ಗುತ ಕಂದತ್ತ ದಾಕಮ ವಾಣಮ ವರಬ್ಬೊಡು ಇಮ್ತಿಹಾಣೆ ದರಿಫುಳ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣೆ ಎಫದ ಇಮ್ತಿಹಾಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಿದನ್ನವಣಿ ಮುಸೀಬಾತೆ ಕುರಿಮತಿವೆಗೆಂದಾಣೆ ಎಫದ ಮುಸೀಬಾತೆ ಕುರಿಮತಿವೆ ಎಕಮುಗ ಮೀ ಎ ಮುಸೀಬಾತುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಇಮ್ತಿಹಾಣು ಕುರವೇ ಗೊತನ್ ಹುಷೇಳಿಜ್ಜಿಯ ನಮ ನಮ ತಿಮಂಗೆ ವಾಹಕನು ದಕ್ಕಚ್ಚೆ ಮೀ ಜುವಾಣೆಯ ಮೀ ವಾಹಕತ ದಕ್ಕ ಹೆದುಮ ಫಹುಗ ದಿಂಗ್ ಮೀಸಾಬು ಮೀ ಅಳುವೆರಿಯಾಯ ಜುವಾಣ ನೋತ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾಯ ದೆಮೆದುಗ ಮಿ ಒಣ್ಣ ಗುಳುಂ ಎ ಹಿಸಾಬು ಎಂ ಉಸೂಲೆಗೆ ಮತಿ ಮಿ ಕೆಂಡಿಗೆ ದಿಯೇ ಮಾಣಕಿ ಏನ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಕದ ಅಳುವೆರಿಯಾ ಗಾತ ಗುಸ್ ಇತುರ ದೆಂ ಎಚ್ಚಿ ದಸ್ಕುರಾಕಶ ನುಜಿಹೆ ದೆಂ ಎಹೆಂ ಉಳುಮುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಏನ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾಯ ಗಾತ ಲೋಫಂ ಮೀಹುಂ ಬರಸ್ ಬಲಿ ಜೀಫಾ ತಿಬೇ ಮೀಹುಂ ಆಸ್ ಏನಗೆ ಗಾತುಂ ಬೇಸ್ ಕುಗ್ಗೆಂ Allah subhanahu wa ta'ala medveri kodevani ena e balin e miha e balin shifa libene goin de mistakunna huriha bayyaka beswarwa kodde farate gotuga mikujja vegen midiye den mi kam mihim vefa awwa e rashuga mikujja mi ule rashuga raskefana ki waran ulafa jabbar mihe hage gotuga enage waran aris miheku lofam ve mizwana ge gata beskurman a den ena ai war ginaguna hadiyata ve sifage ena mi bunani kale ahna bes farwa ko rangal ko difiya mi jama ko fur huriha mudale kale denam duniya ga mi mudala ki war mi hum beenu waachi hage gatu ehmi mi na kurim mi bunani timana miha waruge age denam etimane bes farwa ko dige rangal vejje de mi kujja mi ene mi ene gatu ko mi bunani aharin evs mi he ko rangal ko she nodeme ahna ki mi he ko rangal ko de mi he nuune ehnam es mi balitakum fasiha ko devwa shifa devwani allah subhanahu wa taala fahe kale allah han iman vejjenama timan allah dua ko faname erun allah kale shifa devwane de mi mi ha mi kujja buni gotan allah han iman wani iman vima ez kujja allah dua kurumun allah ene shifa devwa ene mi loluge fenun devvi de mina raskefanu ge darbaran as kurim ve se shin de inna gota raskefanu ge majlis tau ge shin de hen ulen feshima raskefanu mi suwal kurani kale ge lola fenna ge medveri kuri ka ku heye not ekam medveri kod devvi kom faratakun heye mina bi bunani eiti mangge ve raskalange hendu raskefanu buni aharenna enge gotu ge vejje aharenun hen kalau kale ke nuwane aharenun kalau kale ve heye ding ena bunani aharenge ver raskalaange ki raskefanu ge ver raskalaange ei allah subhanahu wa taala e misabun mina atula aniya ko talafola hada mina zaezatu ge suwalo ko kale tikandatta daskoddim miheku bune deshe bune mi wahaka dakkam feshima de algon menne singe nun to algon menge mi duniya matige samkantatta da usulun mina emme fahun me bunani timanne mi kantata mi gota mi mi hisaba mi amota dakkaade mi heki mi kujjae ena uleni mi veni hisabe ge hingaashe timanne aki ge den komme gote wes raskefanu ge mi hu mi kujja raskefan mi kujja gata gos atulaya ganage raskefanu ge gata mi gendani ef huga raskefanu mi suwalu kurani e kujjae timanne angifa gotuga kalege sihunun lofam mi hunna barasbali jifa mi hun fasehe kodde adi enuna setan etak kame kale bamis mi hunna kodde menu heye mi kujja mi bunani timan evs mi hekan evs bayaka shifaen hode nudeme ehnam es e baytakan emi hunna shifa dewa farataki allah subhanahu wa taala
1: ashabul ukhdud wahaka mire mi hisab medkonda ala mi wakiwani madamare evs mi wahaka ge nunimi bayaku تبیفلنا بدلوم امید کرم پروگرام ریکارڈ کری محمد توفیق حسین لبی اشیخ عبداللہ جمیل افدی علی عبداللہ والسلام علیکم